0: मैं हूँ सुजीत।
1: और मैं हूँ अर्पित।
2: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो।

0: मैं हूँ सुजीत।
1: और मैं हूँ अर्पित।
2: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे

0: In a Voice Radio. Goodbye.
1: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, इम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर

0: वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में

0: इन्वेस्ट करे, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करे और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करे।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को
2: इन अ वॉइस मिस कॉट एडनल रेडियो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Liscott Agnail Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

ಜಾತ್ರೆ.

0: हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट अमल,
1: और मैं अवनी,
0: एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो इनर वॉइस।
1: वेलकम टू दिस स्पेशल रेडियो प्रोग्राम ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, अ की मोमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल।

0: जो अगस्त 1942 था, भारत राष्ट्रवादी उत्साह की चपेट में था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ के जाने के लिए कहा गया था। बंबई की हलचल भरे सड़कों से लेकर बिहार की ग्रामीण गांवों तक स्वराज या सेल्फ रूल की पुकार पूरे देश में गूंज उठी।
1: महात्मा गांधी के लीडरशिप में हजारों भारतीय ब्रिटिश राज के विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लाठीचार्ज, सामूहिक गिरफ्तारियां और क्रूर कार्रवाई का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। द रेवोल्यूशनरी स्लोगन डू और डाई बिकेम द रैलिंग क्राई फॉर अ नेशन डिटरमिन्ड टू गेन इट्स इंडिपेंडेंस।
0: अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ मार्शल लॉ को इम्पोज किया और उसकी बाद हुई हिंसा में कई फ्रीडम फाइटर्स मारे गए, यातनाएं दी गई और जेल में डाल दिए गए। फिर भी भारतीय लोगों ने डरने से इनकार कर दिया और अपनी सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध जारी रखा।

0: हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन अंत में दबा दिया गया, लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1947 में अंग्रेजों के पास हार मानने और भारत को आजादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। द सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट पेव द वे फॉर इंडिया टू बिकम अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन।
1: ये भारत छोड़ो आंदोलन की याद में एक विशेष कार्यक्रम था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था।

0: अगले सप्ताह हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: अपने देश से मोहब्बत करें, स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
0: विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
1: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
2: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
0: और मैं अर्पित।
3: And we wish you all happy International Youth Day.
1: And we will meet you in the next program. Aap sun rahe the In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिर।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं।

0: सोशल वेल बीइंग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
1: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेल बीइंग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
2: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
0: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें।
1: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
2: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेल बीइंग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
0: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस

0: की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेट

0: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: मैं ऑस्टिन,
2: मैं सुजीत
0: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
1: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।

0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करे, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करे, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करे और यूथ लीडरशिप को रिकग्नाइज और एम्पलीफाई करे।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे।
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क,

0: सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day,
2: and we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन

0: पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबीइंग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेल

0: बीइंग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी

0: बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क

0: मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
1: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है, अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
2: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
0: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
1: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
2: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
0: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
1: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
2: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: मैं ऑस्टिन,
1: मैं सुजीत
3: और मैं अर्पित,
4: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे
0: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
5: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: मैं हूँ सुजीत।
1: और मैं हूँ अर्पित।
2: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो मिस स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है Different Contexts, Common Aspirations, Advancing Health and Well-being for All Young People in the Americas।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें, और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्प्लीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें, तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, इम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: And we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: Hello, Scott.

0: Escort Agnel Radio.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन वॉइस रेडियो।
2: मैं हूं एनोश।
3: और मैं हूं जेफरी।
2: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
3: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
2: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
3: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
2: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओए जेफरी, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार, तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो

ताले ताग धमी ताग ताले ताग धमी ताग धाला आंखो ताग धेगे ताग ताले के नंत ताग नाक ताग जम ताग नाक नाक जम ताग नाक नाक जम ताग नाक नाक जम धारी ता जग धारी ता जाने जाने को धारी ता को धारी के ता जम धारी ता जग धारी ता जाने जाने को धारी ता को धारी के जम धारी जग धारी ताग नाक ताग ताज जन ताज जन ताज जम धारी जग धारी जाने जाने को

0: अच्छा अनुष, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।
2: रात अकेली है,

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है, मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था, इसका एग्जाम्पल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: हाय, तेरी जुल्फें भाई साहब, क्या लग रहा है?
1: अबे तुझे क्या हो गया?
0: तेरी जुल्फें देख भाई, क्या मस्त लग रही हैं।
1: दूर हट मुझसे।
0: अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो यार गाने की बात कर रहा हूँ। गाना सुन, बहुत प्यारा है भाई, जुल्फों वाली जाने जहाँ।
2: ओ हसी।

0: क्या मेलेडी थी गाने की, मजा आ गया।
1: अच्छा अब ये बता नोश, तू मोहम्मद रफी साहब को जानता है?
0: हाँ भाई, कौन नहीं जानता, मेरे तो वन ऑफ दी फेवरेट्स में से एक है।
1: अरे उनका एक सॉन्ग है जिसने तहलका मचा दिया था।
0: कौन सा?
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए।
0: बजा दे फिर।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए,

0: अरे यार जेफरी, आज पता बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ।
1: क्या हुआ?
0: मैं रास्ते में आ रहा था कॉलेज के लिए और मेरा बैग फट गया।
1: अरे आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ।
0: क्या हुआ तेरे साथ?
1: मैं आ रहा था और मेरी जींस फट गई।
0: अरे बाकी सारी चीज़ें तो टूटती फूटती रहती हैं यार, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है, वो है प्यार।

0: आज जेफरी का मूड बहुत ही अच्छा।
1: अच्छा तो फिर इसी बात पे गिफ्ट दे।
0: ओह क्या छोटी बात कर दी तूने आज। ये ले भाई तू चॉकलेट ले।
1: भाई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब कोई हद से ज्यादा प्यार दिखाता है ना, समझ लो पक्का कुछ

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उससे कहीं

0: आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी डिश जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के आपके पेट और दिमाग दोनों में टर्बुलेंस आ सकता है। सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही ये डिश का नाम है मैगी मिल्कशेक। नाशिक महाराष्ट्र में मशहूर देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आखिर भारत की जनता में कितना दम है। आज के कॉलर से जानते हैं उनकी अटपटी डिश के अनुभव के बारे में।
1: हेलो,
0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी है और मैं आपको ना अपने एक फूड डिजास्टर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं क्या बताऊँ?
0: हाय गार्गी, मैं तो तड़प रहा हूँ आपके फूड एक्सपीरियंस के बारे में सुनने के लिए। आप कोई भी दरिंदगी वाला जो भी आपके साथ आपने कोई रेसिपी ट्राई करी हो भारत के स्ट्रीट फूड में, आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो मर्जी आपकी है, आप जो भी बताएं।
1: मैडम मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी।

0: पूरी समोसा खा लिया, पनीर समोसा खा लिया, लेकिन चॉकलेट समोसा आपको नहीं लगता ये डिजास्टर है?
1: अरे बाप रे, सुन के तो लगता है कि हॉस्पिटल में लोग पड़े होंगे बस ये समोसा खा के। आपने कब ट्राई किया था और आपको किसने सजेस्ट किया इसके बारे में?
0: मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे एक दिन, वहाँ पे वैरायटी समोसे पे हमने मेन्यू चेक करा तो उसमें एक नई चीज ऐड हुई थी और ऊपर से इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर एस्टिक बनाया हुआ था चॉकलेट समोसे के नाम का। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या नई चीज आई है, चलो ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करा, खा लिया, लेकिन

0: मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट स्नैडन प्रिंटो साइनिंग ऑफ।
1: मंजिले अनलिमिटेड।

0: Niscott got talent. Talent.
1: Jabez De Castro.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया उस जगह पर, तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद, कुछ देर इंतजार करने के बाद, जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो है वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे, तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते, मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं, वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं, उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो, वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की कदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं। जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है, वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
0: इंडिया दिल से।

0: Niscott Agnel Radio.
1: In a voice, Niscott Agnel Radio.

इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: Liscott Agnail Radio.
1: Inner Voice, Liscott Agnail Radio.
2: दिल से
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
2: दिल से
3: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा

0: था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे हैं, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है, वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
1: In a voice, radio.
0: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाक्या है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव है। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्ताएं मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को। बाय बाय।
2: इंडिया दिल से।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के यूथ की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: and we wish you all happy International Youth Day.
2: And we will meet you in the next program. आप सुन रहे थे In a Voice Radio. Goodbye.
4: Hello, Scott.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर चार लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युग की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड वी विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो स्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिसइंफॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है, और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करें।
2: साथ ही मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें, इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट करें, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एड्रेस करें और यूथ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज और एम्पलीफाई करें।
0: अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हर एडोलसेंट और यंग पर्सन हेल्दी, सेफ, एम्पावर्ड और अपनी लाइफ में थ्राइव कर सके।
1: तो आइए इस इंटरनेशनल यूथ डे पर यंग पीपल के हेल्थ, वेलबींग और लीडरशिप को सेलिब्रेट करें और उनके साथ एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं।
2: मैं ऑस्टिन,
0: मैं सुजीत
1: और मैं अर्पित,
3: एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे,
2: एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आप सुन रहे थे इन अ वॉइस रेडियो। गुड बाय।
4: हेलो निस्कॉट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो एंड आई एम योर होस्ट ऑस्टिन।
1: मैं हूं सुजीत।
2: और मैं हूं अर्पित।
0: और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के बारे में, जो हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, एडवांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल यंग पीपल इन द अमेरिकाज़।

0: इस थीम का मतलब बहुत सिंपल है। हर यंग पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल, लेकिन सपने एक जैसे हैं। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, डिसेंट वर्क, सिक्योरिटी, डिग्निटी और एक सस्टेनेबल फ्यूचर।
1: क्या आप जानते हैं लेटिन अमेरिका और कैरेबियन में लगभग हर 4 लोगों में से एक 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और चाहे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई हो, फिर भी कई यंग पीपल को आज भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में बैरियर्स का सामना करना पड़ता है।
2: मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, वायलेंस, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की अनइक्वल एक्सेस, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब आज के युद्ध की रियलिटी का हिस्सा है और इनका इम्पैक्ट इंडिजिनस, एफ्रो डिसेंडेंट, माइग्रेंट, रूरल और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज के यंग पीपल पर और भी ज्यादा होता है।
0: लेकिन कहानी सिर्फ चैलेंजेस की नहीं है। अक्रॉस द अमेरिकास यंग पीपल चेंज द लीड भी कर रहे हैं। वो इनोवेटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो हेल्दियर, मोर इक्विटेबल और रेसिलियंट सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे 2026 हमें उनकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है, साथ ही हमें ये कमिटमेंट भी याद दिलाता है कि हर यंग पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड मिलना चाहिए।
2: तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हेल्थ और वेलबींग ही यंग पीपल को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और हर एडोलसेंट और यंग पर्सन क्वालिटी एंड यूथ रिस्पॉन्सिव हेल्थ सर्विसेज का हकदार है।
0: मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी कम्युनिटीज बनाने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने तक यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज यूथ हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट कल पूरी सोसाइटी को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स देगी।
1: इस साल का कॉल टू एक्शन गवर्नमेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर्स, कम्युनिटीज और खुद यंग पीपल से अपील करते हैं कि वो यूथ हेल्थ
3: Scott Agnell Radio.
4: Kahani Time.
5: Good morning, everyone. This is your Melvin from Inner Voice. I like to say something about dreams that always chase in our lives, because dreams is the one who keeps us motivated and keeps us alive to live in this real challenging world. Likewise, a girl called Shifi, a little girl who is shy and reserved, but she enjoys playing soccer. Her friends and classmates ridicule Shifi for her interest in soccer. Nonetheless, she is determined to pursue her passion and become a successful soccer player. Every day after returning from school, Shifi quickly finishes her homework and practices soccer. Her mother understands the love Shifi has for the sport and supports her in every way. When the inter-school competitions are announced at the school, Shifi decides to participate. She takes part in the selection trials and her classmates mock her once again. But they are shocked when Shifi performs well and judges select her to represent the school. And she was awarded the best player of the tournament. Shifi's commitment and hard work impressed and mute every person who mocked at her. Dear friends, determination, strong will and focus can help you achieve even the toughest of goals in spite of all ridicule and challenges by others. Let's dream big and chase it to reach our destination. Wishing you all a good day. Thank you.
4: Kahani Time. Inner Voice, Niscott Agnell Radio. Kahani Time.
6: Hello and welcome to Radio Inner Voice. It's Kahani Time. I'm Sunil here with a new story about our busy life. A brilliant and successful executive was traveling down a neighborhood street. Going a bit too fast in his new Jaguar car. He was watching for kids, playing out from between parked cars and slowed down when he thought he saw something. As his car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the Jag's side door. He slammed on the brakes and spun the Jag back to the spot from where the brick had been thrown. He jumped out of the car, grabbed some kid and pushed him against a parked car, shouting, "What was that all about and who are you?" He got angry and asked, "That's a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it?" "Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do," pleaded the youngster. "I threw the brick because no one else would stop." Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar. A long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick.
4: Kahani Time. Inner Voice, Niscott Agnell Radio. Kahani Time. Hello dosto, main hu Sister Michelle aur aap sun rahe hain Inner Voice Radio mein Kahani Time. Aapki zindagi mein kabhi aisa hua hai ki aapne jaldbazi mein koi kaam kiya ho aur baad mein nuksan ki bharpai aap hi ko deni padi ho? भाई मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर की जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। कहानी टाइम। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंटरी में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नु चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नु चाचा मैं जानता हूं कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं और आज मैं आपसे एक बिनती करने वाला हूं। मन्नु चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नु चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नु चाचा ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज मुझे मना मत करना। मन्नु चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नु चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नु चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री ख़त्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती और ये मन्नु चाचा भी जानते थे। मन्नु चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नु चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नु चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नु चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नु चाचा ये आपके ईमानदारी का इनाम है, मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नु चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम,
3: इन अ वॉइस, मिस्कॉट एग्नेल रेडियो।
7: कहानी टाइम। वंस अपॉन अ टाइम a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the

0: Inner Voice, Miskot, Agnell Radio.
1: Wait.

0: He got angry and asked, "That's a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did you do it?" "Please, mister, please, I'm sorry. I didn't know that what else to do," pleaded the youngster. "I threw the brick because no one else would stop." Tears were dripping down the boy's chin as he pointed around the parked car. "It's my brother," he said. "He rolled off the curb and fell out of his wheelchair, and I can't lift him up." Sobbing, the boy asked executive, "Would you please help me to get him back into the wheelchair? He's hurt and he's too heavy for me." Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in his throat. He lifted the young man back into the wheelchair and took out his handkerchief and wiped the scabs and cuts, checking to see that everything was going to be okay. "Thank you, and God bless you," the grateful child said to him. The man then watched the little boy push his brother down the sidewalk towards their home. It was a long walk back from the man to his Jaguar, a long, slow walk. He never did repair the side door. He kept the dent to remind him not to go through life so fast, so that someone has to throw a brick at you to get your attention. God whispers in your soul and speaks to your heart. Sometimes when you don't have time to listen, He has to throw a brick at you. It's your choice. Listen to the whisper or wait for the brick. Kahani
1: Time. Inner Voice. Miskot Adnan Radio. Kahani Time. Hello dosto, main hu Sister Michelle aur aap sun rahe hain Inner Voice Radio mein Kahani Time. आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया हो और बाद में नुकसान की भरपाई आप ही को देनी पड़ी हो? भाई मेरी जिंदगी में तो कभी कभी ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसा ही हमारे एक कारपेंटर के जिंदगी में भी हुआ। तो चलिए आज के कहानी टाइम में सुनते हैं एक ऐसी ही कारपेंटर की कहानी। तो कहानी टाइम में आइए चलते हैं कारपेंटर के घर की तरफ। तो हमारे इस कारपेंटर का नाम था मन्नू। प्यार से सबजन मन्नू चाचा बुलाते थे। मन्नू चाचा को बहुत सालों का कारपेंटरी में एक्सपीरियंस था और वो रिटायर होने वाले थे। और जिस दिन वो रिटायर होने वाले थे, वो अपने मालिक से मिलने गए। मालिक ने मन्नू चाचा की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, मन्नू चाचा, मैं जानता हूं कि आज आपका रिटायर होने का समय आ गया है। आपने मेरे साथ बहुत सालों से काम किया है, आप हमेशा मेरी तरफ वफादार रहे हैं, और आज मैं आपसे एक विनती करने वाला हूं। मन्नू चाचा अपने मालिक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या है साहब? मालिक मन्नू चाचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मन्नू चाचा, ये एक आखिरी घर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में कारपेंट्री अच्छी तरह से करें। आप करोगे ना, ये आपका आखिरी काम होगा, प्लीज़ मुझे मना मत करना। मन्नू चाचा बड़े दुखी हो जाते हैं। वो चाहते थे कि वो रिटायर हो जाएं, सुख शांति से अपने घर में बैठे रहें, और ये फिर से उनके मालिक ने उनके बुढ़ापे में फिर एक और काम कर दिया। मन्नू चाचा मुस्कुराते हैं और घूमते हुए चलते हैं उस नए घर की तरफ, पर मन ही मन में वो बड़बड़ाते हैं, मेरा आखिरी दिन था, फिर भी मुझसे काम करा रहे हैं, और गुस्से में जाते हैं उस नए घर की तरफ। और जैसे तैसे दिन गुजरते हैं और मन्नू चाचा बिना अपने इंटरेस्ट के जैसे तैसे कारपेंट्री खत्म कर देते हैं। बाहर से तो कारपेंट्री अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कारपेंट्री उतनी बढ़िया नहीं रहती, और ये मन्नू चाचा भी जानते थे। मन्नू चाचा गुस्से में थे, रिटायर तो होना था, जबरदस्ती काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मालिक ये घर देखने आते हैं मन्नू चाचा के काम कंप्लीट होने के बाद, और मालिक एक चाबी का गुच्छा निकालते हैं। मन्नू चाचा काफी देर तक चाबी का गुच्छा देखते हैं। मालिक चाबी का गुच्छा निकालते हैं और मन्नू चाचा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, मन्नू चाचा ये आपके ईमानदारी का इनाम है। मैंने ये घर और यहाँ की कारपेंट्री सब आपको तोहफे में देने के बारे में सोचा था, और ये रहा आपका तोहफा, ये घर, ये सुंदर सा प्यारा सा घर आपके नाम। मन्नू चाचा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग रह जाते हैं कि मालिक ने इतना बड़ा तोहफा दिया। शर्म से उनकी आंखें लेकिन नीचे झुक जाती हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे साथ भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समझते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड करना चल जाता है, जिंदगी चलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में टेक फॉर ग्रांटेड करना बाद में नुकसानदेह ही हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की कहानी की प्यारी सी सीख। कहानी टाइम, कहानी टाइम।
2: इन अ वॉइस मिस गॉट एग्नेल रेडियो।
3: कहानी टाइम। वंस अपॉन अ टाइम A daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling. Just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen and made her sit there. He filled 3 pots with water and placed them all on a gas with a high flame. Once the water began to boil, he put potatoes in one pot, eggs in the second one, and coffee powder in the third pot. He let them boil without uttering a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the gas burners and took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the boiled eggs out and placed them in another bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Child, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, "and touch the potatoes." She did and said, "They have become soft." He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, the egg had become hard. Finally, he asked her to sip the coffee. The rich aroma brought a smile to her face. She felt better with a sip of the lovely coffee and asked her father, "Dad, what do you want to tell me?" He then explained that the potatoes, the eggs, and the coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potatoes went in strong, hard, and unrelenting. But in the boiling water, they turned soft, weak, and gullible. The eggs were fragile with the thinner outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard. So hard that even when you peeled, the white and the yolk was tightly intact. They had turned hard against the adversity of life. However,

0: Liscott Agnell Radio.
1: Be careful, it's my heart, it's not my wife.

0: No.
1: In a voice, Niscott Agnell Radio.

Liscott Agnell Radio.

0: Niscott Agnell Radio.
1: Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh yeah.

0: Niscott Agnell Radio.
1: Okay.
2: Dear Doctor, take one. Right.

0: dog.
1: Inner Voice, Niscott Agnel Radio.

Inner Voice, Miskot, Adnan Radio.

Inner Voice, Miskot, Adnal Radio.

0: Inner Voice, Mescott, Agnell Radio.
1: Where?